0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग साबित कर 4 मिनट.
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: भाई तेरा स्टार है, अपनी बात नहीं कर रहा यार। मैं ये फिल्म आ रही है राघव जुयाल की, जिसका ये गाना आंखों से तूने 2.0।
1: फ्लाइट्स बुक्ड, बैग्स पैक्ड, ब्रेन ऑलरेडी ऑन हॉलिडे, फास्ट क्लेम्स, फेयर प्राइसेस, रियल प्रोटेक्शन फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस एंड मोर, insurancemarket.ae।
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Yes, sounds really interesting. Looks quite awesome. If you ask me, Raghav Jayal, he plays the lead in this film called Bhai Tera Star. I think. What I'm getting is कि जो हीरो का दोस्त होता है ना, हीरो का जो भाई होता है, सेकंड लीड होता है, दैट पर्सन इज द यू नो लीड, उसकी कहानी है ये, इफ आई एम गेटिंग इट राइट। बट इस फिल्म में कौन कौन है अपार्ट फ्रॉम राघव जुयाल? देयर संजय कपूर, who's I think is most untapped potential person in Bollywood, yeah. Barkha Singh and so many more, so it's like they are calling it an ensemble cast. And 30th of July ko ye film release bhi hone wali hai. So yeah, I mean, are you looking forward to this one, depending on all the promotional material that is out there? I think I'm going to put up a poll question about this on our Insta. Don't forget, 106.2 Big FM, that's our Instagram handle. In esta noche, meanwhile, here's Besharam Rang, Shilpa Rao ki awaaz. This is the early morning request star right here on Big 106.2. Send your request 0543091062.

0: Sıçkan. Gel radyo. Sana ne re baba? Abde. Baba baba babu rao. Ganpat rao abde. İdhar dhoti su khayega. O çaddi bhi. Bol.
1: Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: एस सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
7: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the MyAlfred app. Insurancemarket.ae.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: मॉर्निंग साहब, 30 मिनट ऑन दिस सोमवार की सुबह, 34 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 69%, पार्टली सनी स्टार्ट टू दिस डे, विंड्स ब्लोइंग एट 11 किलोमीटर्स पर आवर, हाइज ऑफ 38, लोज ऑफ 34 डिग्रीज।
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: यो यो यो यो करनौजला

0: ऑलवेज वंडर कि यार ये काली तेरी चोटी ते पराठा तेरा ये पराठा लाल क्यों हो रहा है। मेरे पंजाबी फ्रेंड हमारे सेट के नहीं भाई परांदे की बात कर रहे हैं, वो जो रुमाल होता है ना जो चोटी पे लगता है वो, दैट इज परांदा।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: इट इज 7:35 ऑन द क्लॉक मंडे की सुबह, स्टार्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू वीक 27th ऑफ जुलाई। एंड यू नो हियर इज द वंडरफुल पार्ट अबाउट बीइंग इन अ प्लेस फॉर अ व्हाइल, राइट? चाहे जितने भी साल आप कहीं पर गुजार लें, there's always something new that you learn about the place, right? For example, I've been here in the UAE for a while, but did you know that there's a year-round natural waterfall in the UAE? It's called Wadi Buraya, and it's now open to public. You can go and visit for as low as 300 dirhams. What's more, it's a UNESCO-listed reserve, and controlled public tours iske shuru ho gaye since January, and like I said, 300 dirham bookable through Fujairah Holidays. So, jo Fujairah ke 1000 mountains hai, 1000 वो हिंदी वाला नहीं पर हजार माउंटेन्स, क्लियर वाटर यहाँ पे दिखेगा, रॉकी चैनल्स के थ्रू स्प्रिंग्स राइज फ्रॉम द एरिड लैंडस्केप, इट्स एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग। आई वाज सीइंग द पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया एंड फ्रेश वाटर पूल्स, रगेड वैलीज, अगर आप इसका मजा लेना चाहते हैं, एंड हु डजंट नीड अ बिट ऑफ यू नो अ नेचर ब्रेक, देन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर काइंड ऑफ नेचर ब्रेक, बट या यूनेस्को लिस्टेड रिजर्व, इट्स कॉल्ड Wadi Buraya, ओपन टू द पब्लिक ईयर राउंड फॉर 300 दिरहम्स। Cocktail 2 से जग से लाज कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल। Listen, if you've ever been to Wadi Buraya, then please give me a call. Let me know कि आपका experience कैसा रहा। 800-1062 is the number. This is the Big Breakfast with me, Sid.

0: आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमानु वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमानु वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: नमस्ते।
2: ओला।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: बोंजूर।
4: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
6: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. The Big Mix, weekdays 1 to 5 p.m. only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
7: Hey,
6: jaldi
7: hata,
6: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: It's just 7:39. Is it a bit too early for there to be traffic at Al Khalid Street, D92 for heading south, Waterfront Market se Fish Market ki taraf, Gold Souk ki taraf jata hua traffic aapko milne wala hai in Dera. Chalte hain, the usual 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah. Both these arteries you'll find around 7 minutes ka delay. Iske alawa S117, S115, Sharjah Industrial par S112 also getting quite busy, and E11 Etihad Road par as you cross Ajman Industrial 2 heading south, you'll find 4 se 5 minute ki der.
6: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 8:07।
1: Bollywood.

0: आदिभाई सलामकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप?
0: अरे आप बताइए, पहले कहाँ थे आप? कहाँ कर रहे थे किसी का इंतजार? मोहिनी,
1: काफी लंबा अरसा हो गया बात की आपसे, जमाने बाद बात हो रही है।
0: तो बताइए, आतिक इज द परफेक्ट पर्सन टू आंसर दिस मुंबई वर्सेस दिल्ली डिबेट। लेट मी टेल यू द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस, इफ इन केस यू जस्ट ट्यून्ड इन। एक लिस्ट आई बाहर जिसमें मुंबई इज द नंबर वन सिटी इन द वर्ल्ड ना, नॉट इन इंडिया, फॉर स्ट्रीट फूड। आई डोंट थिंक इट इज द नंबर वन सिटी इन इंडिया ऑल्सो फॉर स्ट्रीट फूड। आतिक भाई बताएंगे, बिकॉज आई बिलीव यू आर फ्रॉम अलीगढ़ बट यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन मुंबई। हाँ,
1: यस यस, आई बीन मुंबई सेवरल टाइम्स। मैं रहा हूँ काफी जमाने तक, बॉम्बे में रहा हूँ और दिल्ली में भी रहा हूँ मैं,
0: राइट।
1: तो लेकिन आई हैव टेस्टेड बोथ द फूड्स। नो डाउट दिल्ली के जो फूड्स हैं उनका कोई जवाब नहीं है,
0: राइट,
1: स्ट्रीट फूड्स क्लास से, चाहे वो नहारी हो, कबाब हो, कुल्चे हो, पराठा स्ट्रीट हो, लॉन्ग लिस्ट इज देयर, लॉन्ग लिस्ट। यू विल मेक अ मेन्यू ऑफ दैट स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट,
0: करेक्ट।
1: बॉम्बे में भी स्ट्रीट फूड से नो डाउट आई हैव बीन, बड़ा पाव, कीमा पाव, लंबी लिस्ट है वहाँ भी। लेकिन टेस्ट वाइज जो टेस्ट है हम लोगों का, वो लॉन्ग लिस्ट इज, आई गिव द मार्क्स टू दिल्ली ऑन टॉप।
0: एक काम करते हैं, देखो कुछ चीजें होती हैं जो कि एक जगह की पर्टिकुलर होती है। लेट्स नॉट इवन गेट इन टू वड़ा पाव, क्योंकि वो तो दिल्ली वाले नहीं बना। लेट्स नॉट इवन गेट इन टू पाव भाजी, क्योंकि दिल्ली वाले नहीं बना। बट कंपेयर करते हैं हम लोग चाट टू चाट, ओके। अगर हम चाट टू चाट कंपैरिजन करें आतिक भाई, तो आपके हिसाब से कौन सी चाट इज बेटर, मुंबई या दिल्ली?
1: चाट तो देखिए, बॉम्बे की बहुत जबरदस्त चाट है, चाट का कोई कंपैरिजन दिल्ली से नहीं है। बॉम्बे की चाट बहुत लंबी लिस्ट है चाट की।
0: बॉम्बे इज बेटर देन दिल्ली इन चाट?
1: नहीं, चाट क्या यार, मतलब चाट वाइज, मतलब भेलपुरी और ये सब वहां पर लंबी लिस्ट है।
0: बात कर दिया आपने यार, मतलब आतिक आई एम नॉट योर फ्रेंड एनीवे। अच्छा सेकंड, छोला भटूरा मुंबई। बट देखो लॉजिकली ये टॉप 15 लिस्ट में मुंबई इज नंबर 1, अमृतसर इज नंबर 15। आई हैव नेवर बीन टू अमृतसर, बट आई थिंक टॉप 15 में अगर मुंबई नंबर 1, तो दिल्ली को एटलीस्ट टॉप 5 में तो होना ही चाहिए यार, इफ नॉट एनीवेयर एल्स, राइट?
1: अगर बॉम्बे नंबर 1 रखा तो नंबर 2 पे दिल्ली को रखिए, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर 1 दिल्ली होना चाहिए स्ट्रीट फूड्स।
0: एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री विद यू यार। चलो आतिक, थैंक यू सो मच। अब आपने सिलसिला एक बार फिर शुरू किया है तो कॉल करते रहना, ठीक है? आपके पास है इसका कोई जवाब, येस नो मे बी, देन यू कैन कॉल मी राइट नाउ 800-1062। आई एम ऑल्सो गोना पुट अप अ पोल अबाउट दिस ऑन आर इंस्टा 106.2 बिग FM। In the meanwhile, the let's go version of Chunri Chunri from Hai Jawani to Ishq Hona Hai coming up right here on The Big Breakfast with me. Say good morning. Big 106.2.

0: पर उतनी कम है इंडियन स्ट्रीट फूड की, लेकिन द क्वेश्चन इज हाउ डू सेटल दैट कंट्रोवर्सी ऑफ मुंबई वर्सेस दिल्ली, विच सिटी हैज बेटर स्ट्रीट फूड, इज इट मुंबई और इज इट दिल्ली? आंसर करने के लिए ऑन द फोन लाइन गॉट आतिक विद अस,
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, The Beat of Bollywood.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। बिग टाइम चेक
1: गुड मॉर्निंग 9:07।

0: It's the Sherebroch version of Didi from Dhurandhar the Revenge. It is now time for the big Bollywood quiz.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: All right, so आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक सीन ऑफ आज की बॉलीवुड स्टार जिनका बर्थडे है. ऑलराइट, यू गॉट टू फिगर आउट एंड टेल मी कि आज 27th ऑफ जुलाई कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस बॉलीवुड स्टार का बर्थडे है. सो लिसन टू दिस सीन, यू विल बी एबल टू फिगर आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो कि कौन सी फिल्म है, एंड देन अ बिट ऑफ यू नो लॉजिक लगाकर भी आप पहचान सकते हैं इन केस यू डोंट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द फिल्म का नाम और द एक्ट्रेस का नाम. या सो लिसन टू दिस, टेल मी व्हाट द करेक्ट आंसर इज.
2: अगर उम्र से बड़ा भी तुम्हें घर में मिलेगा पहली बार तो क्या करोगी?
3: उनके पैर छूंगी.
2: शर्मीले वो क्या कहेगी पुकारोगी?
3: मम्मी, तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी.
2: कट. और अगर किसी ने कुछ गिफ्ट दिया या शगुन के लिए पैसे दिए तो क्या करोगी?
3: ले लूंगी.
2: लेना तो है लेकिन उससे पहले ऐसे कहना है, अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी. तो
3: अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी.
2: थोड़ा कम हंस के, अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी.
3: अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी.
2: बेटर.
0: अगर आपने एक्ट्रेस की आवाज पहचान ली, उनका आज जन्मदिन है 27th ऑफ जुलाई. आज इफ यू रिकॉग्नाइज्ड हू दैट एक्ट्रेस, वो उनकी आवाज क्या है, किसकी है, तो देन गिव मी अ कॉल राइट नाउ 800-1062 800-1062. अगर आप जीतना चाहते हैं 2 ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक तबाही, विशाल मिश्रा की आवाज कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.
1: 106.2

0: आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर.
1: नमस्ते.
2: ओला.
1: अस्सलाम वालेकुम.
3: बोंजूर.
4: नी हाओ.
3: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
5: Spin big with Big Ticket.
6: 20 million dirham grand prize.
5: 1 million dirham big spin chance.
6: 5 consolation prizes and weekly e-draws.
5: Buy now at bigticket.ae.
7: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
10: गुड मॉर्निंग, इट्स 9:13 ऑन द क्लॉक ऑन दिस मंडे की सुबह. इट्स बिकम अ बिट क्लाउडी आउट देयर, राइट? 36 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी एट 57%, विंड्स ब्लोइंग एट 10 किलोमीटर्स पर आवर, हाइज ऑफ 38, लोज ऑफ 34 डिग्रीज.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: 92.2 The Beat of Bollywood.
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें।

0: 9:20 हम लोग खेल रहे हैं द बिग बॉलीवुड क्विज. सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्या आज सुबह?
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: ऐसा कमी होता है कि अराउंड 60-70% आई गॉट रॉन्ग आंसर्स. आई गॉट लॉट्स ऑफ कियारा एडवानीज, बट या दैट इज द रॉन्ग आंसर. लेट मी काइंड ऑफ गिव यू वन मोर चांस टू आंसर दैट क्वेश्चन. 27th ऑफ जुलाई आज एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का बर्थडे. हु इज शी? गिव सम क्लूज अबाउट हर. शी इज she holds a BTech degree. All the engineers out there, she's electronics and communication, EC engineering ki BTech degree inke paas hai, and she did it from the JP Institute of Information Technology in Noida before entering the entertainment industry. She won a national award for her film Mimi that released in 2021. Her first film was not actually a Hindi film, it was a Telugu film opposite Mahesh Babu. Then her Hindi debut happened with Heeropanti in 2014. And she won the Best Filmfare ka Female Debut Award in that very film. Trained Kathak dancer hai ye. She's got a production company called Blue Butterfly Films. And she's got a skincare brand as well. Yeah. And the final clue is scene mein. It is Shahid Kapoor who's doing all the interviewing.
2: Agar umar se bada koi tumhe ghar mein milega pehli baar, to kya karogi?
3: Unke pair chhungi.
2: शर्मीला को क्या कह के पुकारूं?
3: मम्मी, तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी.
2: कट. और अगर किसी ने कुछ गिफ्ट दिया या शगुन के लिए पैसे दिए तो क्या करूंगी?
3: ले लूंगी.
2: लेना तो है, लेकिन उससे पहले ऐसे कहना है, अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी. तो
3: अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी.
2: थोड़ा कम हंस के, अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी.
3: अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी.
0: Who is the lady in this scene? Unka aaj birthday hai. If you've been able to figure out the actress ki awaaz, actress ka naam agar aapko pata hai, give me a call. 800-1062 per 2 open movie tickets. 800-1062. Songs coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
1: Big. Big. 106.2.
4: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
5: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड.
4: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में.
4: चलो चले अलराज.
6: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
1: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy.
0: एक्सपेक्ट करते ही हैं. देन देयर इज आल्सो सुबह से जो वाटर फ्रंट मार्केट पे ट्रैफिक था, अब इट इज मच मोर मैनेजेबल एंड दिस गोइंग टुवर्ड्स द गोल्ड सूक इन देरा. देन 611 पे चलते हैं, वेरी वेल बिहेव्ड ट्रैफिक. 2-3 मिनट की देर नस्मा सेंट्रल पार्क हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स अल अवीर. You'll find a bit of congestion going towards Alvarka as well as you cross City Centre Mirdif 311 per, and a bit of traffic building up at 44 Alkhel Road, and this is going towards Business Bay from D3.
1: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
7: तू कौन है? तू कौन है? कौन है तू?
8: कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है?
9: पढ़ो क्या लिख के भेज रहे मेरे को. थैंक यू बोल रहे शुक्रिया कि तुमने हम जैसे लोग की जिंदगी के ऊपर एक गाना बना ले हार्ड ऐसा.
10: ये गाना बिना तेरे को किधर भी नहीं ले जाने वाला.
8: अब क्या समझाऊं अभी तुमको अब्बू.

0: Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: It is 9:37 on the clock. I've got Rohan with me on the phone line. Good morning, Rohan. How are you doing?
2: Good morning, Sid. How are you? I'm good.
1: बिल्कुल बढ़िया. काम के लिए तैयार. How was the weekend, yeah?
2: काम से तो वापस आ रहा हूँ यार.
1: हैं?
2: काम से वापस आ रहा हूँ.
1: अरे second shift?
2: Second shift नहीं यार. I work for airlines, so हमारा schedule up and down होता है. Sometimes morning, sometimes evening, sometimes night as well.
1: How do you keep track, yaar? All those people who complaining about their 9 to 6. Here's Rohan. Look at Rohan. I mean, इनको पता ही नहीं जाता कि कल ये कितने बजे काम करने वाले हैं. Is it like totally random or how many days in advance do you get to know?
2: Actually, a month's roster, so we plan accordingly.
1: Aha, पूरे महीने का roster बदलता है. Then मतलब जस्ट लाइक महीने की शुरुआत में ना पेट्रोल प्राइसेस से आपका मूड अप डाउन होता है, वैसे ही रोहन का रोस्टर देख के मूड अप डाउन होता है. सो हाउ इज इट लुकिंग दिस मंथ? इज इट मोर नाइट्स, मोर मॉर्निंग्स, व्हाट?
2: इट्स मिक्स्ड एक्चुअली.
1: इट्स मिक्स्ड, हां.
2: या
1: चलो बढ़िया है यार. रोहन, आई आस्क यू अ क्वेश्चन लास्ट टाइम एंड यू आर एक्चुअली इन एयरलाइंस. परफेक्ट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज जो हमारी बर्थडे स्टार है, वन ऑफ माई फेवरेट परफॉर्मेंसेज वॉज हर एज एन एयर होस्टेस. Quite a shady one, okay. At that, in this film called Crew, right? So, who am I talking about?
2: Yeah, true.
1: क्या है सही जवाब? सही जवाब क्या है?
2: सही जवाब है कृति सानन.
1: Absolutely correct. Congratulations. ये दो open movie tickets आपके हो गए. अब आप सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपका रोस्टर आपको अनुमति देता है, you can go and watch the movie of your choice. All right, Rohan.
2: Early morning show देखना पड़ेगा.
1: Sorry. Say again.
2: अर्ली मॉर्निंग शो ही देखना पड़ेगा.
1: अर्ली मॉर्निंग देखो यार, बिल्कुल खाली ही थिएटर, आराम से पांव फैला के देखना. रोहन, प्लेजर टॉकिंग टू यू, हैव अ वंडरफुल टाइम.
2: सेम हियर, प्लेजर टॉकिंग टू यू, हैव अ ग्रेट डे.
1: दैट इज रोहन, एयरलाइन वाले रोहन. 1-2 ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज. इट इज कृति सैनन्स बर्थडे टुडे.
3: पैसे कमाने के लिए लिखते हो कि दिल बहलाने के लिए?
4: जो सरस्वती जी लिखाती हैं तो थोड़ा बहुत लिख ले. अंकल जी, लक्ष्मी जी की कृपा से पैसा तो इतना है कि धनतेरस पे आप ही की दुकान खरीद के आप ही को गिफ्ट कर दे.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
5: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
6: Namaste.
7: Hola.
6: Assalamualaikum.
8: Bonjour.
9: Ni hao.
8: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
10: Ready, throw!
11: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Mm. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
12: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata. Are jaldi hata.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
1: It's 9:41 on the clock on this Monday morning. Doing Monday morning things, you'll find a bit of congestion at Waterfront in Nadera. Waterfront market ki taraf jata hua traffic. There's some road works going on over there, so be careful. Abu Hail wala jo area hai, wahan par aapko traffic milne wala hai. Then the usual 11:311, to traffic milega hi milega. 7 se 8 minute ki der to milegi. Heading south, going towards Dubai from Sharjah, Beirut Street, Damascus Street ka traffic is building up. And the good news is that Ajman Industrial 2 se heading south, going towards E11, ka junction with the 88, that is now quite clear. 611 par bhi koi traffic nazar nahi aa raha. 44 is also unusually well behaved for this time of the day. In case you spot something, give me a call. 800-1062.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 10:05।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: लखनऊ पॉलिटिक्स में जाएगा तो बीकू गैंग चलाएगा। जब तक सत्य है तब तक बीकू से भाव को तकलीफ रहता।
1: उसको बोल भाव को मैं भी जानता है, और जब इस समय चड्डी पहन के घूमता था ना तब से जानता मैं उसको।

0: If you're an influencer and somebody asks you which is your favorite college in the world, the chances are that you would answer Arizona State University.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Because ASU, Arizona State University, now offers a course, a degree in a course that we did not see coming. It is an influencer degree, yaar. लेकिन इस डिग्री को पाने के लिए एक शर्त है, आपके जो फॉलोअर्स हैं ना वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होने चाहिए। यहाँ पता चला कि आपका कोई फेक फॉलोअर है और वहाँ आपका डिप्लोमा जब्त हो जाएगा। नो जेन्युइन फॉलोअर्स, नो डिप्लोमा, यानी कि फेक फॉलोअर्स का बिल्कुल ही यहाँ पर चलन नहीं माना जाएगा। एंड द फाइनल प्रोजेक्ट इज गोना मेक स्टूडेंट्स पिक अ प्लेटफॉर्म, यू कैन पिक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाटएवर, एंड बिल्ड अ ग्रोथ स्ट्रेटजी, publish content and then show real audience growth. No fixed follower number is set publicly. At least public mein announce nahi kiya hai ki diploma paane ke liye aapke kitne minimum follower hone chahiye. And is course mein kya hoga? And is course mein you will learn media law, mass communication ke ethics, how to become an influencer, the creator market could hit $480 billion by 2027. So, वन माइट आर्ग्यू कि देर आए दुरुस्त है, बट वन माइट ऑल्सो आर्ग्यू कि यार मतलब डिग्री विग्री ना करना पड़े तभी तो आदमी इन्फ्लुएंसर बनता है। अब इतनी मेहनत पढ़ाई करके इन्फ्लुएंसर बनना पड़े, कैन यू बीट्स द पर्पस? व्हाट डू यू थिंक? यार
1: बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग मिक्स, वीकडेज 1 to 5 PM, ओनली ऑन बिग 106.2, ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae. Big 106.2. That's My Song by E. And.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: की प्यास है।
1: Big Unlimited, Unlimited, the biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही, यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: लगे।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। बिग टाइम चेक,
2: गुड आफ्टरनून, दोपहर के 1:07।
3: Bollywood.

गुड आफ्टरनून. कैसा लगता है यार, गुड आफ्टरनून मेरी आवाज में कैसा लग रहा है? यस, माय नेम इज सिड. सही पहचाना आपने. रोज सुबह मैं आपसे मिलता हूँ 7 से 11, बट आजकल डबल शिफ्ट टिल द 14th ऑफ ऑगस्ट. आई एम फिलिंग इन एंड यू कैन बी विद मी ऑल द वे टिल 5 o'clock. ओह, सो दिस इज हाउ इट फील्स इन द आफ्टरनून. हाँ, मतलब पीक गर्मी एंड नॉट एज मच ट्रैफिक एज द मॉर्निंग. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग साउंड्स एग्जैक्टली द सेम. सो क्या होने वाला है टिल 5 o'clock? आप कुछ मुझे सुनाइए, मैं आपको कुछ सुनाऊंगा. दिस गोना बी सम टॉपिक्स दैट वी गोना टॉक अबाउट, मेनली अबाउट बॉलीवुड एंड दिस वन मोस्ट एक्साइटिंग प्रोजेक्ट दैट इज कमिंग अप इन 3 days टाइम. 30 तारीख को रिलीज होगी. भाई तेरा स्टार है, अपनी बात नहीं कर रहा हूं. राघव जुयाल की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लुकिंग फिल्म है, इसके बारे में बात करने वाले हैं. ऑल दैट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, सो कीप इट लॉक्ड. दिस इज द बिग मिक्स फॉर अ चेंज विद मी सिड. गुड आफ्टरनून.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: कड़कती धूप ऑन दिस मंडे की दोपहर। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज सिड एंड इट्स 50% ह्यूमिडिटी राइट नाउ। 40 डिग्री सेल्सियस टच कर दिया है इन क्वाइट अ फ्यू एरियाज इन द यूएई। ऑन एन एवरेज 39 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। हाईज ऑफ 42, लोज ऑफ 34 डिग्रीज।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big. Big 106.2.

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ जी।

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
3: Where's your next adventure taking you? Live streaming from a safari trip? Posting pictures from a trekking adventure? Or FaceTiming your family from a remote island? Whatever your adventure looks like, there's a data and calling plan made for you. With Roam Like Home, use your local data and minutes abroad, starting from just 100 dirhams. Roam Like Home with Freedom Plans. To subscribe, visit the E& UAE app or our website. T's and C's apply. E&. Go for more.
4: Listen to her every day.
5: Mugambo! खुश हुआ।
6: I think मेरी मम्मी के बाद अगर कोई मेरी आवाज सुन के इतना खुश हुआ है, that is Vicky. Vicky, thank you so much.
7: Hey, और seriously, I'm so happy. मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, बता नहीं सकता सच में।
6: How sweet.
7: मेरी आवाज़ से बात हो गई है यार।
6: Hi Vicky, you are making me feel so nice. मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे मेरी बात हो रही है। You very sweet.
7: But I'm so happy यार, थोड़ा सारी चीजें मेरी आपसे बात हो गई। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कोई कभी बात नहीं होगी आपसे।
6: क्यों? मैं
7: तो ईमेल पे
6: टोल फ्री नंबर है।
7: अरे वो भी मिला है, वो भी बन रहा है, मतलब कि वो कोई पिकअप नहीं कर रहा और वॉइस मेल पे इतना फुल है, वो बोल रहा है कि आप वॉइस मैसेज नहीं सेंड कर सकते, बाइक मैनेजर रहने दे
6: यार। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं आपको खुद कॉल करती हूँ 106.2 बिग एफएम पे। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है मुझसे बात करने की, मैं तो यहाँ रहती हूँ शाम को।
7: और सीरियसली वैसे मुझे लगता है मेरा बैलेंस कम है, अब मैं बैलेंस में बैलेंस भी कर रहा हूँ, बैलेंस भी ज्यादा है, कॉल पे भी वो बोल रहे हैं।
6: आज तक कोई लड़का मुझसे बात करके इतना एक्साइटेड नहीं हुआ है जितना विकी हुआ है, मुझे बहुत मजा आ रहा है।
8: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
9: आपको मिलने वाला है हेडिंग नॉर्थ एज वेल। यहाँ अब ऑफकोर्स उल्टी दिशा में भी ट्रैफिक आपको मिलेगा। दिस इज सिटी सेंटर मिर्दिफ एंड गोइंग टूवर्ड सिटी सेंटर जाइए, यू विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन। ऑल्सो शेख जायद रोड पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक एंड दिस इज मीडिया सिटी हेडिंग नॉर्थ गोइंग टूवर्ड्स उम सिक्किम एरिया। इन केस यू स्पॉट समथिंग, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।
8: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. This is The Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Kia. Self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: दोपहर का माहौल मेरे लिए काफी नया. मेरा नाम है सिड. दिस इज द बिग मिक्स. एंड यू नो क्या करते हैं लोग दोपहर को, क्या बातचीत करते हो आप लोग, खाने पीने की बातें. बट टॉकिंग अबाउट खाना पीना, सुबह मैंने एक पोल सवाल पूछा था एंड देयर इज वन टॉपिक जिसपे हमेशा देयर इज अ लॉट ऑफ पोलैरिटी दैट आई गेट. बहुत उत्सुक भावुक होकर लोग जवाब देते हैं. दैट इज दैट विच सिटी हैज द बेटर स्ट्रीट फूड. हाँ, इज इट मुंबई और इज इट दिल्ली. नाउ द रीजन इज दैट एक पोल आया, राइट. एंड यूजुअली जब कोई लिस्ट आती है, पोल होता है ऑफ यू नो सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, एंड इफ एन इंडियन सिटी मेक्स इट, आई फील रियली रियली गुड एंड प्राउड अबाउट इट. बट दिस टाइम आई डू नॉट एग्री एट ऑल. दिस इज अ लिस्ट दैट वाज पब्लिश्ड ऑफ द टॉप 15 बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड फॉर स्ट्रीट फूड, एंड द नंबर वन सिटी इन द वर्ल्ड इज मुंबई. नाउ देखो, आई स्पेंट अ लॉट ऑफ माई लाइफ इन मुंबई, एंड इफ यू गिव मी अ चॉइस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली, आई वुड बी लॉयल्टी के मामले में आई से आई एम अ मुंबई लॉयल. या बट लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, कंपेयर स्ट्रीट फूड, देर इज नो कंपेरिजन. आई मीन दिल्ली इज फार फार अहेड. लॉट्स ऑफ पीपल ऑन द शो ऑल्सो कॉल्ड मी एंड गेव देयर ओपिनियंस, एंड आई पुट अप अ पोल ऑन आर इंस्टा. यू जस्ट हेड आउट टू 1062 बिग FM, राइट, 1062 बिग FM, दैट्स आर इंस्टा हैंडल. वहां पर जाइए एंड yeah, you can take part in that poll. Which city do you think has better food, Mumbai or Delhi? Delhi does not even feature in the top 15. 15th number pe Amritsar hai, which of course I think should be much higher. Mumbai is number one, even ahead of cities like Tokyo. So I mean, yeah, I think kabhi kabhi ye lists just come out to provoke us. If that is the reason, then yeah, it is totally justified. Mission accomplished. Kya lagta hai aapko? Ek baar phir head out to our Instagram page. If you don't follow us, follow us. This is the Big Mix with me, Sid, all the way till 5 PM. Good afternoon.

0: मैं एक गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून। दोपहर के 2:07।
1: बॉलीवुड।

0: तेषां ये राजो
1: छाने नहीं रहे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपतराव आपते इधर धोती सुखाएगा और चड्डी भी बोल
2: 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड ग्रेट न्यूज अजमान A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward, plus exclusive member discounts. Safir Market. More choices, more savings, more reasons to shop. The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
2: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट
6: गुड आफ्टरनून तपती गर्मी दोपहर वाली पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ 40 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज अक्रॉस द यूएस सुबह की शुरुआत थोड़ी क्लाउडी हुई थी पर लेकिन अब नो साइंस ऑफ दोज क्लाउड्स एक्सपेक्ट हाइज ऑफ 42 लोज ऑफ 34 डिग्री सेल्सियस
2: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. This is The Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Good afternoon. This is The Big Mix with me, Sid, all the way till 5 p.m. I'm filling in for the first time in an afternoon. You're listening to my voice. So, haan, jitna naya aapko lag raha hai, utna hi mereko. Lekin ek nayi khabar that might kind of shock you a bit. Gen Z are going into debt. कर्जे की दुनिया के अंदर घुस चुके हैं जेंजी, बट फॉर अ रीजन दैट इज क्वाइट अमेजिंग. एंड द रीजन इज दैट 76% से दैट दे आर नॉट गेटिंग फुल्ली पेड बैक व्हेन दे एक्चुअली फ्रंट मनी फॉर देयर फ्रेंड्स. कहीं पर बाहर जाते हैं ग्रुप ट्रिप्स पर, डिनर्स पे, इवेंट्स पे, एंड देन यू नो यू विल फाइंड ऑलवेज अ कपल ऑफ फ्रेंड्स इन योर फ्रेंड सर्कल सेइंग यार सॉरी मैंने अपना बटुआ जरा घर पे भूल गया, ए थोड़े से दे देना मेरे लिए पैसे. एंड देन यू डू दैट वो पैसे कभी वापस मिलते नहीं है. 47% सेड दैट कवरिंग ग्रुप एक्सपेंसेस इज पुश देम इनटू डेट. यार इतना क्या पैसे दे रहे हो यार. आई मीन ट्वाइस बिटन थ्राइस शाय वंस बिटन ट्वाइस, ये सब तो ठीक है यार, बट कितना आपको मतलब करना पड़ेगा टू एक्चुअली गो इनटू डेट. दैट इज इट्स क्वाइट क्रेजी. मोर देन हाफ 55% सेड दैट रीपेमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएटेड टेंशन्स और नेगेटिवली अफेक्टेड रिलेशनशिप. आप बताइए आपके फ्रेंड्स सर्कल में, फ्रेंड्स ग्रुप में कभी पैसों की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? आई मीन या ईदर देर इज रोमांस or there is money. These are the two things that should never come between a friendship. Huh? What do you think? I'm going to put up a poll about this on our Insta, 106.2 Big FM. That's our Insta handle. You can always follow us. Agar aap nahi karte, toh kya kar rahe ho? Follow karo, 106.2 Big FM. This is the beat of Bollywood.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 3:07।
1: Bollywood.

0: Hollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo! खुश हुआ।
3: आई थिंक मेरी मम्मी के बाद अगर कोई मेरी आवाज सुन के इतना खुश हुआ है, दैट इज विकी। विकी थैंक यू सो मच। हाय विकी, यू आर मेकिंग मी फील सो नाइस। मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे मेरी बात हो रही है। यू वेरी स्वीट।
4: बट आई एम सो हैप्पी यार, छोड़ो सारी चीजें, मेरी आपसे बात हो रही है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कभी बात नहीं होगी आपसे।
3: क्यों? मैं आज
4: ईमेल पे ट्राई किया,
3: टोल फ्री नंबर है।
4: अरे वो भी मिला है, वो भी बन रहा है, मतलब कि वो कोई पिकअप नहीं कर रहा और वॉइस मेल पे इतना फुल है। वो बोल रहा है क्या भाई, मैसेज नहीं सेंड कर सकते भाई, मैनेजर रहने दे
3: यार। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं आपको खुद कॉल करती हूँ 106.2 बिग एफएम पे। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है मुझसे बात करने की, मैं तो यहाँ रहती हूँ शाम को।
4: और सीरियसली वैसे मुझे लगता है मेरा बैलेंस कम है, अब मैं बैलेंस में बैलेंस भी कर रहा हूँ, बैलेंस भी ज्यादा है, कॉल पे भी वो बोल रहे हैं।
3: आज तक कोई लड़का मुझसे बात करके इतना एक्साइटेड नहीं हुआ है जितना विकी हुआ है। मुझे बहुत मजा आ रहा है।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। This is The Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big Weather Update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
7: दोपहर की कड़कती धूप, on an average 40 degrees Celsius across the UAE, maximum 42 and minimum of 34 degrees Celsius this afternoon.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Kia. Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: और जब कार रेंटल की बात आती है ना, यू स्पेंड टू मच टाइम स्क्रोलिंग, यू ऑल्सो फाइंड योरसेल्फ स्पेंडिंग टू मच टाइम स्क्रोलिंग टू फाइंड द राइट रेंटल कार. मीट सिया, सेल्फ ड्राइव की एआई कार रेंटल असिस्टेंट. यू जस्ट टाइप योर बजट, कार टाइप और एनी प्रेफरेंस एंड सिया इंस्टेंटली रेकमेंड करता है द राइट कार. नो एंडलेस स्क्रोलिंग, जस्ट अ क्विक एंड ईजी बुकिंग. विजिट सेल्फ ड्राइव.ae टुडे.

0: तेषां ये राजो जाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपतराव आपते इधर धोती सुखाएगा और चड्डी भी बोल
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड आफ्टरनून 4:07।
1: Bollywood.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: दोपहर की गर्मी, इट इज ऑन एन एवरेज 40 डिग्रीज सेल्सियस अक्रॉस द यूएई राइट नाउ, हाइज ऑफ 42, लोज ऑफ 34 डिग्रीज सेल्सियस।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2 बिग।

इज इट मी, आपको भी लग रहा है कि रविचंद्रन अश्विन रिटायर होने के बाद ज्यादा काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू प्री रिटायरमेंट? ही इज एवरीवेयर. एक तो ही इज जॉइन द डब्लिन गार्डियंस एज कैप्टन एंड मेंटोर फॉर द इनॉग्रल सीजन ऑफ द यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग द ETPL, जो कि 26 अगस्त से शुरू होने वाला है एंड इट इज ओन्ड बाय राहुल द्रविड. या एंड नाउ सुनते कि ही इज ऑल्सो द फ्रंट रनर टू रिप्लेस अजीत आगरकर द चीफ सिलेक्टर ऑफ द BCCI. ही इज डूइंग अ वेरी सक्सेसफुल यूट्यूब रिव्यू शो एज वेल. सो ही इज गॉट हिज हैंड्स फुल. US में भी कुछ कर रहे हैं, US में भी जाकर कुछ लीग भी खेल रहे हैं, खिला रहे हैं, कहीं कोच तो कभी प्लेयर. या देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता. व्हाट डू यू थिंक अबाउट आर अश्विन एज चीफ सिलेक्टर? एक्चुअली दाल आटे का भाव तब पता चलता है जब आदमी सिलेक्टर बनता है. आई थिंक इट्स इवन मोर डिफिकल्ट देन बीइंग द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक आई एम गोना रन अ पोल क्वेश्चन अबाउट दिस ऑन आर इंस्टा 106.2 बिग FM. दिस इज बिग 106.2, अ पार्ट ऑफ द फनी शेयर नेटवर्क.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 हिस्ट्री बनाएंगे।
1: 106.2, the beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: This is The Big Mix on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा, ऐसे ही कुछ हो गया. रेगन, रिमेंबर दैट नेम रिंग्स अ बेल? रेगन, या इन द लास्ट ओलंपिक्स देयर वाज दिस न्यू स्पोर्ट एयर कोट्स कॉल्ड ब्रेक डांसिंग, एंड देन शी काइंड ऑफ मैनेज्ड टू ऑलमोस्ट एम्बैरेस एन एंटायर कंट्री. ऑलमोस्ट क्या, या एम्बैरेस ऑल द ऑस्ट्रेलियंस. नहीं नहीं नहीं, ये हमारी कंट्री नहीं हो सकती. एक तरफ कहां उनका यार रिच स्पोर्टिंग हेरिटेज, एंड दिस लेडी केम एंड लिस मेड अ मॉकरी ऑफ ब्रेक डांसिंग, इतना कि वो कैंसिल, इवेंट ही कैंसिल हो गया. भाई हमको रखना ही नहीं है, माफ करो, सॉरी, थैंक यू, नो थैंक यू. बट या नाउ व्हाट इज द लेटेस्ट दैट वी आर हियरिंग, रेगन उस लेडी पर अब एक बनने वाली है नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री. इट्स ऑलमोस्ट लाइक द बिग बॉस फंडा ना, कि लाइक आई सेड शुरुआत में, कहावत जो होती है जब समझ में आती है तो मजा आ जाता है, कि बदनाम, बदनाम वर्ड में भी नाम तो होता ही है. सो दैट्स गोना हैपन. लेट मी आस्क यू, रेगन पे जब देखो, क्यूरियोसिटी तो है यार. आई विल बी वन ऑफ द first few people to be honest to go and watch this documentary, ki yaar everybody is thinking ki what was she thinking. On one hand, she's won so many, you know, titles, she was selected to represent Australia, and then she goes and makes an absolute, I don't know what, of herself here out there. So I'm very curious, and I'm very very sure that she's made a lot of money from Netflix also, so you might say mission accomplished. Anyway, this is The Big Mix with me, Sid, for a change, all the way till 5 p.m. right here on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तू कौन है? तू कौन है? कौन है तू?
1: कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है?
2: पढ़ो क्या लिख के भेज रहे मेरे को, थैंक यू बोल रहे, बोले शुक्रिया कि तुमने हम जैसे लोग की जिंदगी के ऊपर एक गाना बनाया ले हार्ड ऐसा।
0: ये गाना बिना तेरे को किधर भी नहीं ले जाने वाला।
1: अब क्या समझाऊं अभी तुमको अब्बू?
3: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: वाओ योर हेयर कलर लुक्स स्टनिंग।
5: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स।
4: या राइट, नो इट्स हेना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री एंड एनरिच्ड विद हेना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल।
5: रियली?
4: या, एंड विद अ इजी कॉम्ब एप्लीकेटर इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स।
5: आई एम बाइंग इट राइट नाउ।
4: गेट मैक्सिमम ग्रे कवरेज, वाइब्रेंट कलर एंड अ नेचुरल लुकिंग फिनिश विद हेना स्पीडी इजी हेयर कलर मेड इन इटली।
3: Missed your morning buzz?
6: ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ये सुनो,
7: एक लिस्ट आई बाहर जिसमें मुंबई इज द नंबर वन सिटी इन द वर्ल्ड ना, not in India for street food. I don't think it is the number one city in India also for street food. Atik bhai batayenge because I believe you're from Aligarh but you have spent a lot of time in Mumbai, huh?
8: Yes, I've been in Mumbai several times. Main raha hu kafi zamane se Bombay mein raha hu aur Delhi mein bhi raha hu main. So lekin I have tested both the foods. No doubt Delhi ke jo foods hain unka koi jawab nahi. Bombay mein bhi street foods hain, no doubt. I've been bada pav, keema pav, lambi list se maabi. Give the marks to ramen Delhi.
7: एक काम करते हैं। देखो कुछ चीजें होती हैं जो कि एक जगह की पर्टिकुलर होती है। लेट्स नॉट इवन गेट इनटू वड़ा पाव, क्योंकि वो तो दिल्ली वाले नहीं बना। लेट्स नॉट इवन गेट इनटू पाव भाजी, क्योंकि दिल्ली वाले नहीं बना। बट कंपेयर करते हैं हम लोग चाट टू चाट। ओके, अगर हम चाट टू चाट कंपैरिजन करें आतिक भाई, तो आपके हिसाब से कौन सी चाट इज बेटर, मुंबई या दिल्ली?
8: चाट तो देखिए बॉम्बे की बहुत जबरदस्त चाट है, चाट का कोई कंपैरिजन दिल्ली से नहीं है। बॉम्बे की चाट बहुत लंबी लिस्ट है चाट की।
7: बॉम्बे इज बेटर देन दिल्ली इन चाट?
8: नहीं, चाट यार मतलब चाट वाइज मतलब भेलपुरी और ये सब वहां पर लंबी लिस्ट है।
7: बात कर दिया आपने यार, मतलब आतिक आई एम नॉट योर फ्रेंड एनीवे।
3: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
9: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata.
10: Ha ha.
9: Are jaldi hata.
10: Ha
3: ha. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Ulti disha ka traffic ka shuru ho gaya. Mere liye to ulti disha hai because subah I'm too used to telling you like southbound traffic, but now northbound traffic going towards Sharjah from Dubai has started 311 par, and especially when you cross the city center Mirdif, you'll find a bit of congestion in the direction of city center Zaya. Getting towards city center Mirdif also is a bit congested. Festival city wale area mein, then there's E11 also Alnada. Getting towards Alnada interchange 1, you'll find 4 se 5 minute ki der. Iske alawa Alkhel road is also getting a bit busy heading north. In case you spot something and if it's safe to call, call me on 800-1062.
3: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

मुझे दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारो नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। I'm a hustler, A1, lifestyle, A1, ए मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल, कटोर मरावा के तिछोरे करनाल, के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में।

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: पैसे कमाने के लिए लिखते हो कि दिल बहलाने के लिए?
1: जो सरस्वती जी लिखाती हैं तो थोड़ा बहुत लिख लेते। अरे अंकल जी, लक्ष्मी जी की कृपा से पैसा तो इतना है कि धनतेरस पे आप ही की दुकान खरीद के आप ही को गिफ्ट कर दें।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is the Big Thrill. Monday. Almost the end for a lot of you. I'm sure you're heading back home. All set to keep you company here until 9. Aapki companion while you are stuck in traffic and going back home. Every single evening, Pansano, I keep you company with some fantastic music. बहुत सारी गप्पे शप्पे हम मारते हैं, बट हम शुरुआत करते हैं गाना गाने से, with the karaoke. मैं कहती हूँ गाना आए या ना आए, गाना चाहिए. स्पेशली मंडे शाम को तो 200% गाना चाहिए. सो इफ यू थिंक आपके अंदर का भी कुमार सानू सोनू निगम बाहर आने के लिए बेकरार है, रजिस्टर नाउ फॉर द karaoke. ऑल यू नीड टू डू इज मुझे व्हाट्सएप करना है 0543091062 पर. किक स्टार्टिंग द शो विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक. गुड इवनिंग द टाइम राइट नाउ 5:02.
2: Bollywood.

0: ignored Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: The only thrilling and exciting part about Monday is that you're going back home. While you're heading home, we jam while you're stuck in the traffic jam. Dekho, hum sab bathroom singers hote hain, but ab ye talent bathroom tak kyun chupa ke rakhna? When I'm giving you a platform, aap seedha Sheikh Zayed pe apna concert kijiye. All you need to do is dil khol ke gana hai. This is the only place jahan pe kharab singing ko hum encourage karte hain, motivate karte hain. Yahan pe gana aaye ya na aaye, bas gana chahiye.
1: Karaoke.
2: अगर आप उनमें से हैं जो हर कैरियोकी पार्टी में जाते हैं लेकिन लोग आपको माइक देते ही नहीं है, तो ये माइक मैं आपको देने वाली हूँ. वेरी वेरी सिंपल, एवरी इवनिंग आई प्ले यू अ ट्रैक. अगर आप उस ट्रैक को पहचान लेते हैं, देन आई गिव यू अ चांस टू शोकेस योर टैलेंट टू द वर्ल्ड. एंड दिस इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट गाना, शाहरुख खान का फ्रॉम द 90s.

अगर आपने गाना पहचान लिया है ऑलरेडी फोन लाइंस आर बिजी, तो बस आप भी 800-1062 पे कॉल करके कारियोकी कर सकते हैं. फिलहाल वी've got a beautifully recreated one from भूल चूक माफ.

0: 92.2.
1: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
4: वाओ, योर हेयर कलर लुक्स स्टनिंग।
5: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स।
4: या राइट,
5: नो इट्स हिना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री एंड enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with henna speedy easy hair color. Made in Italy.
6: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
7: Extremely slow moving, a 25 to 30 minute delay if you're taking the first Al-Khail. There's also traffic on the Sheikh Mohammed bin Zayed. Filhal dikha raha hai 32 minute delay. Heavy traffic on Sheikh Zayed, not really bad. Monday ki sham ke hisab se theek thaak hai. Filhal 18 minute delay, but ye to bas shuruaat hai. Aage dekho hota hai kya. Agar aap Al Manara Street pe going towards Umm Sukeem, wahan bhi patchy traffic hai. Anything else you'd like to report, mujhe bataiye 800-1-0625.
6: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
8: Tum bimar ho?
9: No.
8: To leti kyun?
9: Mere body mein sensations hote hain, pehle unko control karte hain.
8: Kaise hain sensations?
9: Sensations jaise sarsaraahat, sansanaahat, dhudkudaahat, dhagmagaahat, farfaraahat, tharfaraahat, tapkabahat, dharbaraahat, dharbaraahat, tapkabahat, dharbaraahat, dharbaraahat, chatpataahat.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, you have Big Thrill Mansi right here on Big 106.2, The Beat of Bollywood. And aa chuki hai Bindiya. Hi Bindiya.
2: Hi Mansi, how are you?
1: I am good, aap kaisi hai?
2: All good.
1: How was Monday, Bindiya?
2: Today it was good. My boss was on sick leave.
1: मैं आगे ना कुछ बोल नहीं सकती हूँ, ये मेरे बॉसेस भी इस वक्त सुनते हैं। तो आज बिंदिया करती क्या है आप, जिससे बॉस सिक लीव पे चले जाते हैं? फिलहाल मुझे एक बात बताओ, गाना वाना गाते हो?
2: I just sing for myself.
1: अरे बेस्ट, अपने लिए गाना गाना इज द बेस्ट।
2: रेडियो एंड आई एम ड्राइविंग डेली लाइक 1 आवर ड्राइव ऑन ईच साइड.
1: मैं हमेशा कहती हूँ कि गाना आए या ना आए गाना चाहिए, बिकॉज इट्स सो रिलैक्सिंग. आपके गाने से किसी और को स्ट्रेस हो शुड नॉट बी योर प्रॉब्लम. सो भाइयों और उनकी बहनों, लेट्स सी के बिंदिया आज शाम क्या करती है. वील प्ले द ट्रैक फॉर हर.
0: कारियोकी.
2: कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो.
1: और दो लाइन गा दो यार.
2: तुमको बुलाओ के पल के झुकाओ
1: कदम तुम जहां जहां रखो.
2: जमी को आसमां बनाओ
1: सितारों से सजाओ
2: अगर तुम
1: कहो. वैसे हम दोनों ने गाया कम है, कहा ज्यादा. बट नॉट बैड एट ऑल. मतलब सुर जो है वो थोड़ा सा लेन के बाहर आ रहा था, क्योंकि ये लेन चेंज करने में बिजी थी. आई कुड हियर द इंडिकेटर. बट मजा आया नहीं आया बिंदी?
2: यस, इट वाज अमेजिंग.
1: Thank you so much. Keep singing. And I can't even say that I wish kal bhi boss aapka sick leave pe rahe. Aisa bolna nahi chahiye. It's bad, but you have a great evening. Bye. यही है कारियोकी की. अगर आप भी करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे कॉल करना है 800-1062 पर.
0: कारियोकी Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, मैं हूँ मानसी और यहाँ पे ढेर सारे धुरंधर्स जो बाथरूम सिंगर्स के साथ साथ कैरियोके सिंगर्स भी हैं. दिस इज व्हाट वी डू एवरी सिंगल इवनिंग व्हाइल यू इन द कार, गिविंग यू अ चांस टू शोकेस योर टैलेंट टू द वर्ल्ड विद द कैरियोके. मतलब दिल का दर्द दिल में क्यों रखे जब वो कानों तक आ सकता है गानों से.
0: कैरियोके
1: तो अगर आप भी गुनगुनाते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 800-1062 पर. फिलहाल कमिंग अप इसी के साथ वी हैव गॉट अमित त्रिवेदी विद दिस वन मधुबंती बागची की आवाज में राइट हियर ऑन द बिग थ्रिल.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
2: Monday की शाम, we are karaoke-ing here. Like I said, गाना आया ना आए, गाना चाहिए। And Vicky, please, Vicky नहीं, विक्की आ चुके हैं। Hi Vicky, कैसा रहा Monday so far?
3: Superb, superb, amazing. मेरे सर में, मतलब मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है दो दिनों से, बट मैं आज जो मेरी आपसे बात हुई, बिल्कुल परफेक्ट हो गए एकदम।
2: हाय हाय हाय, किसी की जिंदगी में मैं सर दर्द हूँ और किसी की जिंदगी में सर दर्द का इलाज। फिलहाल विकी, आप गाना पहचान चुके?
3: अरे नहीं रे यार, गाना पहचाने में थोड़ा सा, लेकिन मेरे दूसरे वाला गाना आता, सुना दूं?
2: नहीं नहीं, आप कैरियोके का जो ट्रैक है वही सुनाओगे, दूसरे वाला गाना मतलब ही इंडियाज़ गॉट टैलेंट थोड़ी ना है। हम यहाँ पे कैरियोके ट्रैक सुनाते हैं, वही गाना होता है ना।
3: ये पहले बताना चाहिए था ना,
2: ये मैंने आपको ट्रैक इसलिए सुनाया है ना।
3: मैं ऐसा कोई गीत,
2: रुक जाओ, मुझे ट्रैक तो प्ले करने दो यार, रुक जाओ एक सेकेंड, आप बहुत जल्दी में।
1: कैरियोके
3: प्यार तुम जगाऊं, मैं ऐसा गीत गाऊं कि तुम साथ हो।
2: लिरिक्स तो मतलब जिसने लिखे होंगे अगर उसने सुन लिया तो
3: रह गया, आज रह गया भाई।
2: अरे इतना खूबसूरत गाना है, यस बॉस का, जूही चावला शाहरुख खान, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरजू जगाऊं अगर तुम कहो।
3: बट ये वाला मुझे नहीं आता यार मानती, कल मैं इसको प्रिपेयर करूंगा, कल जो भी होगा ना मैं
2: प्रिपेयर
3: करूंगा।
2: यार विक्की, कोई एग्जाम थोड़ी ना कि प्रिपेयर करना है, बट ये गाना जैसा आपने यहाँ पे गाया है तो आई थिंक कई लोगों को भी सर दर्द और हो गया होगा।
3: नहीं, मैं दूसरा कोई गाना सुना सकता हूँ क्या?
2: अच्छा सुनाओ, चलो।
3: मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, कितना नशा है ये क्या मजा है, प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना।
2: वाह यार, मतलब आप सुबह प्रिपेयर करते हो, एकदम इम्प्रॉम्प्टू नहीं गा पाते हो।
3: नहीं, मतलब गाने मुझे बस आ रहे आते हैं, बट ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है यार, मतलब मैंने कभी गाए नहीं ये वाला।
2: चलो अभी आज मैंने आपको सुनाया ना, घर जाके सुनना, इसकी प्रैक्टिस करना, एंड घर जाके जो है आई होप कि आपका सर दर्द ठीक हो जाए। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग।
3: आप ठीक हो गया?
2: अच्छा ठीक हो गया।
3: अरे ठीक हो गया, मेरा सर जो है ना हिल नहीं रहा था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ आवाज में शिफा होती है उनके।
2: होई होई होई होई।
3: ठीक हो जाते हैं,
2: आवाज में शिफा होती है, बस मैं तो यहीं पिघल गई। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड थैंक यू सो मच विकी, एंड ड्राइव सेफ।
3: ओके ओके,
2: बाय,
3: टेक केयर, बाय बाय।
1: कैरियोके।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, I'm Mansi right here on 106.2 part of Fun Asia Network. You have Big Thrill. Hum khel rahe 5-second rule, and joining us is बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल. हाय फैजल.
3: हाय, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड. डिड यू गेट द गैंग्स ऑफ वसाईपुर रेफरेंस या फिर एमी मैंने हवे में डायलॉग मारा?
3: ऑलवेज ऑलवेज
2: ऑलवेज. आई लव द मूवी. हां,
3: आई एम सेइंग हाउ इज माय रोल इन दैट.
2: Your role is fantastic as always. Faisal is my favorite. फिलहाल हम खेलेंगे 5-second rule. It's a fun game. आपको मिलते हैं 5 second. मैं आपको दूंगी कुछ categories. 3 चीजें बतानी है 5 second के अंदर. All the best.
1: 5-second rule.
4: Oh yeah.
2: Three things that are green in color and are edible. हैं? अरे अरे अरे अरे अरे पालक, मेथी, broccoli. क्विकली टेल मी तीन बॉबी देओल की मूवीज. और है टाइम खत्म, टाइम खत्म. दूसरी क्या बोली थी आपने?
3: रेस. रेस
2: रेस थ्री. अच्छा, फटाफट खेलने वाला गेम है फैजल. ये तीन लड़कियों के नाम विद द लेटर ए.

0: मानसी।
1: ए ए अरे मानसी तुम्हारे दिल में फंस गई है क्या? मानसी एम से है, ए से नहीं है फैजल। सो क्यूट, सो क्यूट। थ्री थिंग्स दैट यू एब्सोल्युटली डिसलाइक अबाउट योर कोवर्कर्स।
0: आई एम लाइक आई कैन नॉट से एनीथिंग, सॉरी।
1: क्यों, साथ में बैठे हैं?
0: नहीं नहीं, तो बोलने से समझ नहीं रहा, 5 सेकंड।
1: अच्छा तो लंबी लिस्ट है?
0: बहुत लंबी लिस्ट है।
1: 5 second rule. Oh yeah. फैजल आपने गेम बहुत खराब खेला, बट दिल जीत लिया यार। जब मैंने बोला 3 लड़कियों के नाम, ए से सिर्फ मानसी मानसी मानसी पहला लड़का है फैजल, पहले लड़के ने जो है मेरा दिल जीता इतने टाइम बाद। थैंक यू सो मच।
0: मैंने तो पहले तुम्हारा नाम लिया ना।
1: ओके, थैंक यू फैजल। ये 5 second rule आपने खेलना है। एक ही रूल है, 800-1062 is the number to dial.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Great news, Ajman! A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Missed your morning buzz?
2: एक लिस्ट आई बाहर जिसमें मुंबई इज द नंबर वन सिटी इन द वर्ल्ड ना नॉट इन इंडिया फॉर स्ट्रीट फूड. आई डोंट थिंक इट इज द नंबर वन सिटी इन इंडिया ऑल्सो फॉर स्ट्रीट फूड. आतिक भाई बताएंगे बिकॉज आई बिलीव यू आर फ्रॉम अलीगढ़ बट यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन मुंबई. हां
3: यस यस, आई बीन मुंबई सेवरल टाइम्स. मैं रहा हूँ काफी जमाने से बॉम्बे में रहा हूँ और दिल्ली में भी रहा हूँ मैं तो. लेकिन आई हैव टेस्टेड बोथ द फूड्स. नो डाउट दिल्ली के जो फूड्स हैं उनका कोई जवाब नहीं है. स्ट्रीट फूड से नो डाउट आई बीन बड़ा पाव, कीमा पाव, लंबी लिस्ट है वहाँ भी. गिव द मार्क्स टू रामन दिल्ली ऑन टॉप.
2: एक काम करते हैं देखो, कुछ चीजें होती हैं जो कि एक जगह की पर्टिकुलर होती है. लेट्स नॉट इवन गेट इनटू वड़ा पाव क्योंकि वो तो दिल्ली वाले नहीं बना. लेट्स नॉट इवन गेट इनटू पाव भाजी क्योंकि दिल्ली वाले नहीं बना. बट कंपेयर करते हैं हम लोग चार्ट टू चार्ट. ओके, अगर हम चार्ट टू चार्ट कंपैरिजन करें आतिक भाई, तो आपके हिसाब से कौन सी चार्ट इज बेटर, मुंबई या दिल्ली?
3: चार्ट तो देखिए बॉम्बे की बहुत जबरदस्त चार्ट से, चार्ट का कोई कंपैरिजन दिल्ली से नहीं है. बॉम्बे की चार्ट बहुत लंबी लिस्ट है चार्ट की.
2: बॉम्बे इज बेटर देन दिल्ली इन चार्ट?
3: नहीं, चार्ट यार मतलब चार्ट वाइज मतलब भेलपुरी और ये सब वहां पर लंबी लिस्ट है.
2: बात कर रही आपने यार, मतलब आतिक I am not your friend anymore.
0: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
6: Still 36 degrees, low jayega around 34. Very, very, very humid today, 68% par.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: मंडे की शाम है, मन लगाने के लिए ट्रैफिक में फंसे फंसे हम खेलते हैं द 5 सेकंड रूल. फन गेम बट नॉट वेरी इजी. यू गेट 5 सेकंड्स, आई गिव यू फ्यू कैटेगरीज, तीन चीजें आपने बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. जॉइनिंग अस मिस्टर तंजील, गुड इवनिंग.
2: गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मानसी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ. मंडे कैसा था सर आपका?
2: मंडे अच्छा था.
1: तंजील, हमारी कई महीनों पहले बात हुई है ना, आप शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रहे थे.
2: आपको याद है?
1: मुझे याद आया.
2: थैंक यू सो मच. आपको याद है?
1: मिली नहीं मिली?
2: नाम याद है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात.
1: नहीं नहीं, ऑफकोर्स मिली नहीं मिली.
2: नहीं नहीं,
1: ओए होए होए,
2: अभी तक
1: सब्र का फल मीठा होता है. आपका तो ऑफ कोर्स मीठा होने ही वाला है जब आप इतना इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल तंजील, यू ऑलरेडी नो द गेम के रूल्स आई गेस. आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट.
0: 5 सेकंड रूल.
3: ओह यस.
1: तीन अक्षय कुमार की मूवीज. अरे रे रे रे रे रे रे रे, एक भी नहीं पता.
2: एक अक्षय कुमार की मूवीज.
1: ये देखो खत्म हो गया टाइम. आपको एक भी नहीं पता?
2: मैं फैन हूँ अक्षय कुमार का.
1: अच्छा, फिर भी एक नहीं बता पाया. आज कृति सैनन का बर्थडे है, उनकी तीन मूवीज बताइए कृति सैनन की.
2: कृति सैनन हीरोपंती.
1: हो गया टाइम फटाफट तंजील, 5 सेकंड के अंदर. तीन ऐसी चीजें जो दूध और चावल से बनती हैं.
2: खीर
1: और
2: सॉरी बर्फी. और
1: बर्फी में चावल डल रहे हैं. आपकी 100% अब शादी हो जानी चाहिए. मुझे नहीं पता आप कौन सी बर्फी खा रहे हो. तीन बॉलीवुड गाने जिनमें हम आता है इन द टाइटल एच यू एम
2: हम. हम आपके हैं कौन
1: और
2: हम साथ हैं.
1: अरे टाइम खत्म हो गया.
2: दिल दे चुके सलाम.
1: फटाफट तंजील 5 सेकंड. वो कहते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह, वैसे ही खेलना है ये भी. तीन ऐसी चीजें जो चाहते हैं कि आपकी होने वाली बेगम में हो. क्वालिटीज.
2: लॉयल होना चाहिए. हाँ. और खूबसूरत होना चाहिए. और प्लस
1: आप बस अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला डायलॉग बोलो, क्योंकि 6-7 महीने बाद में आपसे बात कर रही हूँ, अभी तक नहीं मिली है. जिंदा हो और लड़की हो. बहुत ही खराब खेला है तंजील. बट कोई बात नहीं. आई रियली रियली विश के फटाफट आपकी शादी हो जाए एंड सही शख्स से शादी हो. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग.
2: Thank you so much, Mansi.
1: Bye. This is what I always tell you. The game sounds very, very easy until you play the game. 800-1062 is the number to dial.
0: Big 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, yeah, Big Thrill, Mansi. We're playing the 5-second rule and heading to the mall right now, not to complete her 10,000 steps, but to just take the kids out of the house is Nikita. Hi, Nikita.
2: Hello, how are you?
1: I am good. On a scale of 1 to 10, how soon you want them to go back to school?
2: they are not that bad. So
1: Hi, so cute. How so cute. Kaun se mall ja rahe ho?
2: We are going to Mertif.
1: Mertif. I think ho gaya aapko 10-12 saal UAE mein. Mertif. Jaisa aapne bola hai na, aa gaya aap mein bhi wo accent. Hai na?
2: Yes. More than 12 years.
1: वो जैसे आपने दुबई मर्डिफ जैसे हो जाए ना, तो बस समझ जाओ कि आप दुबई में काफी समय से एक्सपैट हो. फिलहाल वी विल प्ले द 5-second rule. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें बतानी है 5 second के अंदर.
0: 5-second rule. Oh yeah.
1: Quickly name तीन गाने जिनमें the letter, the word बिंदिया आता है.
2: बिंदिया
1: बोले चूड़िया नहीं. अरे कंगना है, बिंदिया नहीं है उसमें. मेरी बिंदिया.
2: हाँ, मेरी निंदिया समथिंग.
1: तेरी बिंदिया रे. बहुत सारे सोचो तो.
2: करो करो.
1: अरे ये देखो बच्चे बैठे हैं. फिलहाल मुझे एक बात बताओ, तीन काजोल की मूवीज फटाफट.
2: कल होना हो
1: में कहाँ थी काजोल?
2: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे.
1: टाइम खत्म हो गया. कल होना हो में कहाँ दिख गई थी काजोल आपको? एक गाने में सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस थी. शी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मूवी. थ्री थिंग्स दैट यू फाइंड ओनली एट अ बीच.
2: अम्ब्रेला, सैंड, वाटर.
1: वेरी नाइस. पहला जवाब 5 सेकंड के अंदर. थ्री थिंग्स दैट आर येलो इन कलर एंड आप खा सकते हैं. खत्म हो गया टाइम. 5 सेकंड. यार बच्चे बैठे हैं निकिता, हद है.
2: सॉरी.
1: मुझे ही अपने बच्चों को सॉरी बोलो.
2: काफी बड़े हैं यू नो.
1: अच्छा तो वो बोलते ही रहते हैं. ये सही है, मम्मियां बोले तो चलता है. बच्चे जैसे ही बोले फिर जो मम्मियां अपने रूप में आती हैं. गेम तो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं खेला निकिता, बट आई होप यू हैड फन.
2: I did perfectly. I really did had fun.
1: चलो, you have a great Thank evening you so with much. Your bachcha party and have a great, great, great shopping time, whatever you're doing in the mall.
2: Thank
1: of
2: you.
1: Modif.
2: Thank you. Chalo,
1: bye.
2: You too. Bye.
1: Yeah, 5 second rule, Marikana. Sounds very easy, but itna asaan hai nahi. Agar aapne khelna hai, to 800-1062 is the number to dial.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is the Big Thrill of Mansi. And today's research is what they say. As they see, you know, it is very, very common. And I think it's a very good practice. If you have restaurant, you have ordered food, you have not eaten, then we pack it. Either we give it to someone, or then we eat it the next day. I think I love leftovers the next day. But the research says that कई ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं रेगुलरली, बट जब वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए बाहर लेकर जाते हैं, अ पोटेंशियल गर्लफ्रेंड, अ डेट और प्रॉब्ली अ बिजनेस पर्सन, तो उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में वो लेफ्ट ओवर्स कभी पैक नहीं कराते हैं. सो आई वॉन्ट टू नो हाउ ट्रू इज दिस रिसर्च. क्या आपने कभी किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, जबकि दाल मखनी आधे से ज्यादा बची थी, पैक नहीं करवाई है? मुझे बताओ ऑन 800 1062. किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:08।

0: राइट नाउ आई हैव गॉट परीन विद मी, एंड परीन को अपने खुद के नाम का मतलब नहीं पता है ना?
1: मतलब अभी बनाना है तो बना
0: रहे। बनाना क्या है, मतलब बुआ ने नाम रखा है मुझे बता रहे थे, तो कुछ मतलब तो होगा ना?
1: When you Google it shows that it is one of the name of Ganpati, but बस वही डर लगता है कि गणपति में विसर्जन ना कर दे।
0: सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा परी, मुझे एक बात बताओ। आप डेट पे गए किसी लड़की के साथ, आप दोनों ने खाना ऑर्डर करा एंड खाना बच गया, तो क्या आप उसे पैक करा के लेके जाओगे या फिर आप सोचोगे कि नहीं नहीं मुझे इसको इम्प्रेस करना है तो मैं पैक नहीं कराऊंगा?
1: अच्छा मैम, आई एम फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, तो मेरा तो अरेंज मैरिज हो रहा है, तो यू नो द नेक्स्ट आंसर मैं और मेरी बेबी दोनों पैक करवा लेते।
0: आपने बोला आई एम फ्रॉम अ गुजराती फैमिली में, तभी समझ गए कि लेफ्ट ओवर के एक्स्ट्रा पापड़ भी ले जाएंगे।
1: मैम पापड़ तो ठीक है, सॉस भी नहीं छोड़।
0: परीन यार, ओहो मजा आ गया। तो मतलब आप दुनिया में किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए खाना जो है वो छोड़ के नहीं जाएंगे, आप लेकर ही जाएंगे।
1: वेस्टिंग फूड इज अ बैड थिंग।
0: आई टोटली अग्री एंड आई टोटली बिलीव कि अगर खाना आप खा नहीं पा रहे हो घर लेकर जाओ, अगले दिन सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, बट डोंट वेस्ट फूड।
1: तो वो रिसर्च में कोई गुजराती इंट्रोड्यूस रहा तो रिसर्च कैन
0: आल्सो। लव इट यार परी, मतलब मजा आ गया।
1: मी एंड माय सन बोथ वर लिसनिंग टू यू एंड द रीजन व्हाई आई कॉल्ड यू बिकॉज माय सन मोटिवेटेड मी। आपने लास्ट कॉलर को पूछा था अबाउट दैट येलो फूड, तो ही इमीडिएटली विद इन 7 सेकंड ही आंसर्ड इट, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू।
0: हां तो आपको तो बहुत येलो फूड पता होंगे, बिकॉज़ यू नो गुज्जू, ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, कड़ी।
1: जब से 3 इडियट्स आई है ना, तब से सब गुजराती फूड खाली खमन ढोकला, फाफड़ा और जलेबी के अराउंड ही घूमता है। तो उधर हम लोग बसा आ चुके हैं।
0: आई लव गुजराती खाना, इट्स माई फेवरेट। देर इज समथिंग कॉल्ड खिचू, दैट्स माई एब्सोल्यूट फेवरेट। यार मुझे ज्वाइन करवाओ ना कोई गुजराती किटी पार्टी। एक तो मैं पैसे बचाना शुरू करूंगी, दूसरा मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी।
1: हम लोग अनुराधा ही है यहाँ पे, सब पैसे डबल, हेरा फेर हेरा फेर।
0: I totally agree. Only with a Gujarati friend आप अपने पैसे डबल कर सकते हो, क्योंकि इनसे बेटर स्कीमें कोई बनाता नहीं है। But thank you so much, Parin. You have a lovely evening.
1: You too.
0: Bye.

0: 92.2.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचीक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
7: InsuranceMarket.ae. We insure the cat. We also insure the yacht the cat is sitting on. Pet, yacht, car, health, home, and more. Call 800 Alfred 24/7. InsuranceMarket.ae.
8: It's hot it up with big tickets.
9: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
8: 500,000 dirham winners. And 1 million dirham big spin game.
9: Buy now at bigticket.ae.
10: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
3: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
11: Not really big, but still patchy. A 25-minute delay if you're on Sheikh Zayed. It is clear Hesse Street पर एक 5 से 8 मिनट का डिले आपको मिलेगा अगर आप स्पोर्ट्स सिटी के आसपास हैं। There is slow moving traffic Marina to JLT. Heavy traffic though इस वक्त अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास, and still a bit patchy सिटी सेंटर मर्डिव से एतिहाद मॉल दिखा रहा है 12 से 18 मिनट का डिले। इसके अलावा कहीं अटके हैं बताइए 800-1062 पर।
3: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, you have Big Thrill, Mansi, and of course, aaj hai Kriti Sanon ka birthday, a fellow number 9. Yeah, main aisi hu, fellow Zodiac, fellow number 9. But of course, before stepping into Bollywood, we know that Kriti ne electronics and telecommunication se engineering kari hai from JIIT Noida, just like the rest of the engineers I know. She chose a completely different performance and different career. Unka breakthrough hua tha with the Hindi movie हीरोपंती, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला था. बट शी ऑल्सो वन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द पोर्ट्रेयल ऑफ द कैरेक्टर इन द मूवी मीमी. आई लव दिस मूवी. आई थिंक कृति सैनन इज सच अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस. कॉमेडी करा लो, जैसे लुक्का छुपी में, बरेली की बर्फी, या फिर इंटेंस रोल्स, द वन that she portrayed in Dopatti, chahe a robotic role in Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya, she is fantastic. In fact, it is very hard for me to choose ke meri favorite movie Kriti Sanon ki kya hai. Ek taraf hai Mimi, dusri taraf hai Dopatti, and I also love Bareli Ki Barfi. Beyond acting, she also has a skincare brand and her own production house called the Blue Butterfly Films. And Blue Butterfly फिल्म से ही उन्होंने अपनी पहली मूवी बनाई थी दोपत्ती, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ताड़ दिए थे. एंड कांट वेट. आई वाज जस्ट रीडिंग समवेयर के इन द मिड ऑफ ऑगस्ट, स्पेशली ड्यूरिंग द लॉन्ग वीकेंड, कॉकटेल 2 OTT पे आएगी. सो याद ऑफिशियल माशूका ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे. हियर सेलिब्रेटिंग कृति सैनन विद दिस वन फ्रॉम कॉकटेल 2.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

27 तारीख होती ही ना, बहुत जोर से याद आने लगती है मुझे भी, आपको भी आती होगी। मैं बात कर रही हूँ सैलरी की, क्योंकि ये सारे बिल्स जो है वो देने होते हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। दो तीन दिन बचते हैं, सैलरी का इंतजार रहता है, तो वो काटे नहीं कटते लम्हे इंतजार के वाली फीलिंग होती है। एंड इसी पर आपकी और मेरे दिल के हाल पर एक रील बनाई है इंस्टाग्राम पे, सो जाइए गो शो सम लव 106.2 बिग एफएम। इट इज फिलहाल कमिंग आउट ब्रेक इस पर होता है From तू या मैं, right here on the Big Thrill. When I come back, we talk about this classic again, जो मैंने नहीं देखी है। I always talk about movies and celebrate movies जो मैंने नहीं देखी होती है, but classic है from the 70s. I'll give you all the hints when I come back.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, ये है Big Thrill, Mansi, and on this very day, long before हम इस दुनिया में आए थे, classic आई थी, I'm talking about a movie from the early 70s. It is a Bollywood classic, and there's a list of movies जो मेरी मम्मी ने मुझे बोला है कि मुझे देखनी ही चाहिए. I have seen a few, like मैंने गाइड देखी है, मैंने पड़ोसन देखी है, but ये मूवी उस लिस्ट में थी, but unfortunately मैंने आज तक देखी नहीं है. So yes, a good reminder that I watched this movie. So आज ही के दिन 1973 ये मूवी रिलीज हुई थी, directed by the legend himself. I'm talking about Hrishikesh Mukherjee. The plot of the movie was a successful, very very famous male singer Subir, जो चाहता है कि उसकी जो बहुत ही talented but बहुत ही शांत सी बीवी है उमा, वो भी professionally गाए, only to realize later कि कितना jealous हो जाता है वो, क्योंकि उमा उससे ज़्यादा successful हो जाती है and ज़्यादा popular हो जाती है. The lead stars were newly married in real life also जब ये movie theaters में आई थी. Timeless music है, composed by S.D. Burman, who also won the Filmfare Award for this very movie. And बहुत सारे evergreen classics हैं. In fact, the lead actress को भी best actress का award मिला था. बहुत सारे hints मैंने आपको दे दिए हैं, अगर आपने guess कर लिया है कि ये कौन सी movie है, एक आखिरी hint और दे देती हूँ, इसी movie से गाना है. For all those who watch classics and are into retro movies, बहुत easy है. याद आ गया तो 800-1062 is the number to dial.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2 The beat of Bollywood.
2: Hello.
3: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना। हेलो, सुन रहे हो ना?
4: Hey,

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Welcome to the last hour of the show. We're celebrating this classic today, जो मैंने unfortunately नहीं देखी है. 1973 में रिलीज हुई थी. आज ही के दिन ऋषिकेश मुखर्जी की मूवी है. Again, touches a very, very interesting topic कि अगर शादी के बाद आपकी वाइफ आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए तो क्या मेल ईगो बीच में आता है. If you've guessed the movie, then you can give me a call on 800-1062. Kick starting this hour with

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: स्टिल 35 डिग्रीज और लो 34 तक ही जाएगा। काफी ह्यूमिड है आज। ह्यूमिडिटी फिलहाल 73% पर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: नहीं एक्चुअली मैं उसके बाद से बाहर भी गया था।
1: देन उसके बाद से मिलने गए थे
0: मैं मिलने नहीं, आई वेंट फॉर दिस आयुर्वेदिक स्पा।
1: मंडे को ऑफिस के बाद आयुर्वेदिक स्पा एक्चुअली इज अ वेरी गुड आइडिया। हम लोग ये सब वीकेंड के लिए पुश करते हैं, बट मंडे को स्पा कराना बहुत जरूरी है। फिलहाल आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस क्लासिक व्हिच हैड द लीड एक्टर हु वाज अ सिंगर इन द मूवी, एंड वो चाहता था कि उसकी वाइफ भी प्रोफेशनली गाना गाए। जब वो गाना शुरू करती है उसे जेलेसी हो जाती है, ईगो आ जाती है। मूवी का नाम क्या था?
0: अभिमान।
1: एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने देखी नहीं है अभिमान, आपने आई एम श्योर देखी होगी।
0: देखी मैंने बहुत बहुत साल पहले देखी थी, बट स्टोरी लाइन ऑब्वियसली याद है, बट हाँ दैट्स अबाउट इट। बचपन में देखी थी मैंने।
1: हाँ मैंने आज तक ये मूवी नहीं देखी है। गाने मुझे पता है कि बहुत कमाल थे इस मूवी के। ऑफ कोर्स दो सिंगर्स के ऊपर मूवी थी। आई डोंट नो इफ यू आर सिंगल, इफ यू आर मैरिड, अगर आपकी वाइफ
0: मैरिड,
1: ये तो बहुत दुखी हो के बोला आपने मैरिड, इसलिए मंडे को स्पा करा। अरे मुझे सीरियस सवाल पूछने दो यार, आप रुको। हाँ सीरियसली, हाँ सो हाइपोथेटिकली आप और आपकी वाइफ एक ही प्रोफेशन में हैं, एंड शी स्टार्ट्स डूइंग बेटर देन यू, तो क्या मेल ईगो बीच में आएगी?
0: आइडियली तो नहीं आनी चाहिए। अगेन दिस इज हाइपोथेटिकल, रियल सिचुएशन में क्या होता पता नहीं, बट आई डोंट थिंक सो आना चाहिए। आई मीन इट वुड बी एन एडेड एडवांटेज, नो दैट्स हाउ आई वुड लुक एट इट।
1: सो यू आर वन ऑफ दोस सिक्योर मेन जिन्हें लगता है कि हां इट्स ओके इफ शी इज succeeding, that means we are succeeding together.
0: Yeah.
1: ये आप hypothetically बोल रहे हैं ना?
0: हाँ जी।
1: Real life में जब होगा तो ये तो नहीं बन जाओगे इस movie के अमिताभ बच्चन?
0: I hope so not.
1: ऐसे भी जमाने बदल गए हैं। अगर आप अमिताभ बच्चन बनोगे उस जमाने के, तो आज के जमाने की जया बच्चन बन जाएंगी।
0: बिल्कुल।
1: थैंक यू सो मच, फिर आपने सही मूवी पहचानी, एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू यू फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू जस्ट हैड स्पा, और मेरी जो हंसी है वो स्पा के इफेक्ट्स खत्म करती है। तो यू हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय।
0: थैंक यू सो मच।

0: holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: जिस हिसाब से कॉल्स आए हैं मुझे लग रहा है आई एम द ओनली वन जिसने ये मूवी नहीं देखी है, व्हिच इज सच अ शेम. इट इज अ क्लासिक एंड आज ही के दिन 1973 रिलीज हुई थी. फिलहाल ये है बिग थ्रिल, मैं हूं मानसी एंड आई हैव गॉट अजहर विद मी. हाय अजहर, कैसा रहा मंडे?
3: मंडे अच्छा था, बहुत काम था और नाउ आई एम ड्राइविंग बैक होम.
2: इतना लेट?

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, यह Big Thrill Nancy and great news for all those जिनके पास UAE Golden Visa है and जिनके पास नहीं है, अगर आप eligible हैं, मैं ये खुद से भी बोल रही हूँ, I think it's time to get one, क्योंकि बहुत सारे advantages हैं, this is just one of them. So, अगर आपका passport abroad घूम जाता है, आपका UAE Golden Visa 30 minutes में आपको घर पहुंचा सकता है, let me tell you how, within 30 minutes, free of charge and a valid one, Return trip to the UAE service आपको मिलती है when you have a UAE golden visa and आपको एक electronic return document मिल जाता है and while you're outside the country figuring out के passport नहीं है, घूम गया, damage हो गया, this helps you get back home very very easy. It's a 3-step process. You log into your UAE pass, upload the required documents and you receive the document via email जिसे use करके आप फिर से वापस UAE आ सकते हैं if at all you damage or lose your passport abroad. और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इट्स अ नाइटमेयर अपना पासपोर्ट इन अ फॉरेन लैंड घुमा देना. तो ये बहुत ही अच्छी एक एडवांटेज है. आई थिंक इफ यू आर एलिजिबल, दिस इज अनदर वेरी वेरी गुड रीजन टू अप्लाई फॉर योर गोल्डन वीजा.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, यह है बिग थ्रिल. मैं हूं मानसी. एंड इफ यू नो मी फॉर अ व्हाइल, यू नो दैट आई लव एनिमल्स, स्पेशली आई लव डॉग्स. आई ग्रू अप विद डॉग्स. एंड मेरे सामने आप बहुत ही कुछ अमेजिंग रख दो और साइड में एक डॉगी हो तो आई विल चूज द डॉगी. आई एम अ टिपिकल डॉग पगलू. अब एक मूवी आने वाली है, ओ माई डॉग. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, बट आई ऑल्सो नो कि मैं बहुत रोने वाली हूँ और मैं बहुत परेशान होने वाली हूँ. पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा, माही राय मूवी में है एंड थिएटर में रिलीज होगी ऑन द 7th. क्योंकि वेन एवर आई वॉच दीज डॉगी मूवीज, इनफैक्ट एनी मूवी दैट हैज अ डॉग, अगर उस डॉग को कुछ हो जाता है तो मैं बहुत परेशान होती हूँ. तू या मैं, प्लॉट ही डिफरेंट था, बट यू नो वॉट हैपन्स टू द डॉग, राइट? इफ यू डोंट नो, प्लीज वॉच द मूवी. आई वॉज सो अपसेट. मैं बोल रही थी कि यार इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से किसी एक को खा जाए क्रोकोडाइल. बट कांट वेट. इट इज अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट एंड पीपल हुव हैड डॉग्स, हुव हैड पेट्स, दे नो अगर जिंदगी में कोई आपको शिद्दत से अनकंडीशनल मोहब्बत करेगा तो वो आपका पेट ही करेगा.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट सबसे सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: सॉफ्ट रिदम्स, स्लो वाइब्स एंड सॉन्ग्स दैट हग यू बैक। यू आर इन द बिग चिल जोन ऑन बिग 106.2। ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae।

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द UAE कॉल 800-ALFRED-247 Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Thank you.
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

Yeah, come on. Don't stop. This is my brother, Rushad on bass.